0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Are you disaster ready? Australia Post is partnering with Australian Red Cross to help households prepare for the unexpected. Taking a few simple steps today can make a big difference tomorrow. Get started at redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: रोशनी के साथ मिले और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी साइंस वर्सेस खुल चुकी है। टिकट बुक करें म्यूजियम विक्टोरिया
4: प्राउड
0: स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
5: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता। डाइवर्स इम्यूनिटीज इसे बदल रहा है, एक निःशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं, जानकारी, कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं। इस महीने निःशुल्क जुड़ें और $50 का वेस्टफील्ड वाउचर जीतने का मौका पाएं। डाइवर्स इम्यूनिटीज हम सभी के लिए 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
6: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
3: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
7: हर घर विच असी अपने प्यारियां दा ख्याल रखते हाँ। छोटियां छोटियां आदतां जो असी घर विच अपनाउंदे हाँ वह भी इसे देखभाल का हिस्सा हैं। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के तरीके साड़ी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि यारा वैली वाटर भी तुहाडे पीण वाले पानी को सुरक्षित रखने लिए उस तरह पूरा ख्याल रखता है। ज़्यादातर पानी सुरक्षित कैचमेंटा तो आता है और तुहाडे घर तक पहुँचने तो पहला बकायदा जांचा जाता है। हर रोज़ साढ़े भाईचारे के परिवार टूटी तो सीधा पानी पीन का आनंद लेंदे हैं। इसलिए जो तुसी अपनी टूटी खोलते हो तो तुसी पूरे भरोसे नाल उस विचों सीधा पानी पी सकते हो। हर बूंद विच भरोसा, यारा वैली वाटर।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
8: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा। 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है। अधिक जानकारी के लिए www.3ZZZindian.org। आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से।

0: talking Oyo, Nyimba, Kabumba.
1: नमस्कार, ये है 3ZZZ.com.au और ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं अमित और रेणु तिवारी। तो जी हाँ, आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं और ये विशेष प्रस्तुति कर रहे हैं विशाल भारद्वाज।
2: गाना लगा दे।

0: नहीं, जी हाँ। तो आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं संगीत के ऊपर। विशाल भारद्वाज जी एक हाल ही में 27 सितंबर को एक प्रोग्राम करेंगे मालवन थिएटर में, 27 सितंबर को 4:30 बजे से। और आज हम उसी के बारे में और संगीत हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू रेनू जी, इट्स बीन एन ऑनर। आई थिंक मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ।
0: जी हाँ,
1: हालांकि बार बार आना चाहता हूँ।
0: तो विशाल जी, आज हम लोग कुछ, पहले आप अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करेंगे और उसके बाद ही हम लोग कुछ गाने वाने सुनेंगे।
1: हाँ जी, प्रोग्राम के बारे में हम गा गा के बताएंगे सबको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप अपने संगीत में थोड़ी सी अपना परिचय देकर और कुछ बताएं कि इस प्रोग्राम में आप क्या करने वाले हैं और किस जगह हो रहा है, और तो फिर हम उसके बारे में, संगीत के हमारे ऊपर क्या हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव रहता है, उसके ऊपर इन जनरल डिस्कशन करेंगे।
1: जी नहीं, थैंक यू। बहुत ही प्यारा और उम्दा टॉपिक आपने चूज़ किया है, संगीत का हमारे जीवन पर प्रभाव। मगर जैसा कि आपने कहा कि मैं दर्शकों को, सुनने वालों को पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है विशाल भारद्वाज। प्रोफेशन से पता नहीं, कुछ करते रहे हैं, मगर हाँ, दिल से, आत्मा से सिर्फ एक संगीत का, जस्ट अ म्यूजिशियन, राइटर एंड म्यूजिशियन। दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, क्योंकि वो है ना कि ज़िंदगी हमें कई कई रास्तों पर, किसी किसी नए नए मोड़ों पर ले जाती है, जहाँ हमें कुछ वो करना पड़ जाता है जो हम चाहें या ना चाहें करना पड़ता है। काफ़ी लोग बोलते हैं, जस्ट पेज माई बिल्स, सो यू कीप ऑन डूइंग दैट, राइट। मगर हाँ, लिखना और संगीत से बहुत क्लोजली जुड़े रहना, शायद यही मेरा वास्तविक परिचय है।
0: या तो संगीत आपके जीवन में क्या स्थान, जैसे कि आप कहें आपके लिए मनोरंजन है, कि आपके लिए एक साधना है, कि आपके लिए कोई इमोशनल मतलब वो है कि आप अटैचमेंट है, कि आप उसके बिना, जैसे कि यू डोंट फील योरसेल्फ जब तक म्यूजिक आपके जीवन में ना हो, या सब कुछ है?
1: सब कुछ कहना ही आसान होगा मगर आसान जवाब देना मेरी नेचर में ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं हूँ तो संगीत है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संगीत है तो मैं जो हूँ वो मैं हूँ, क्योंकि अपने लाइफ के बहुत सारे दौरों से गुजरते हुए, जो हमने, जो द वे वी हैव इवॉल्वड, जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो किया है, जैसे जैसे मैंने ग्रो किया है, जैसे मैं जो आज हूँ उस मुकाम तक पहुँचा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण संगीत है। और इसके लिए मैं किसी और को भी अंडरमाइन नहीं कर रहा, ना मेरे पेरेंट्स को, ना मेरे सरकमस्टांसिस को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार को, नहीं। मगर संगीत ना होता तो शायद, क्योंकि हम सबके, शिट हैपेंस, यू नो, थिंग्स हैपन, मगर जब हम, जो चीज़ हमें उस दौर से निकाल कर हमें हमारे ही, हमें खुद से साक्षात्कार करा सकती है, हमें उस दौर से निकाल कर हमें आगे बेहतर इंसान होने पर, उस रास्ते पर लेके जा सकती है, आई थिंक वो भगवान है अपने आप में। तो मेरे लिए संगीत भगवान है।
2: विशाल जी, जैसे संगीत के बारे में कहा जाता है कि संगीत के बड़े अलग अलग रूप हैं।
1: जी,
2: मतलब वही एक गाना आपको भावुक कर देगा, तो वही आपको बिल्कुल एक तरह से, जैसे कि पुराने वॉर में होता था ना कि शंख और वो सब, ये
1: वीर रस,
2: वीर रस, तो हर रस का एक अलग अलग, मतलब आप कह सकते हैं कि संगीत का
1: एक अलग इम्पैक्ट है। जी, जी।
2: और मैंने जैसे नॉर्मली देखा है कि मैं तो अपने लाइफ में क्या करता था कि जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है तो कुछ अच्छे मस्ती वाले गाने लगा लो
1: चला तो, जाता हूँ
2: मतलब तो मैंने ये देखा है कि अभी जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कितनी सारी बातें हो रही हैं, मतलब ये डिप्रेशन पे और इस पे, तो इसमें अभी संगीत का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है मेरे ख्याल से। तो मैं थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ, बट
1: नहीं, बड़ी आपने अच्छी बात कही है, आपने भी डिप्रेशन का नाम लिया है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा नहीं है, एक बात बताता हूँ कि देखिए संगीत हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बहुत सारे रागों में विभक्त किया गया है ना, मगर यदि हम उसकी रूट्स में जाएं, उसके हम गहराई में जाएं, तो हर राग के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंसान का ये कहना कि इंसान ने रागों को इन्वेंट किया, वो दे आर जस्ट बीइंग प्राउड, ऐसा नहीं हो सकता। हमने सिर्फ रागों को डिस्कवर किया है, हमने एक इमोशन को पहचाना और इस इमोशन के साथ जुड़ा हुआ एक कुछ हमने सुरों का एक संकलन किया, वो एक राग बन गया और हमने उसको राग का नाम दिया, है ना। अब जब हर एक राग जो एक इमोशन को लेके जा रहा है, जैसे कि हम राग शिवरंजनी की बात करते हैं, राग शिवरंजनी आप मानेंगे इसको थेरेप्यूटिक राग बोला जाता है। इनफैक्ट कई ऐसे राग हैं, मगर शिवरंजनी का तो एक थेरेप्यूटिक राग होने में उसका ओहदा बहुत ही ऊपर है। ऐसा लगता है कि जब जब आप उस राग को बजा रहे हैं, उसको गा रहे हैं, तो दिल शायद रोने का ही करता है। उसमें गाने भी आप देखेंगे तो ऐसे हैं जैसे कि

0: तब देख इस इन इन आप सोच रहे हैं ना, जैसे हम ये गा रहे हैं तो अंदर से जैसे कुछ लग रहा है, कुछ कट रहा है, या शायद कुछ कटा हुआ बाहर व्यक्त हो रहा है,
1: नहीं तो है ना? जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं
0: जी
1: वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हुए हैं, क्योंकि वो एक तरह से जैसे कि मतलब बैलेंस होता था उनका। और अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब दुनिया का एक ट्रिप किया, तो एक चीज़ मैंने मार्क की कि हमारे जो राग और ये सब के मतलब टाइमिंग्स और अलग अलग मतलब भाव और जो कुछ है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस माना जा सकता है, क्योंकि बाकी जगह पे म्यूज़िक है बट उनका म्यूज़िक बड़ा या तो चर्च बेस्ड या वैसा शुरू में हुआ या फिर सूफी वगैरह का म्यूज़िक जब आया उनका, तो दे ऑल हैव दैट फोक म्यूज़िक एंड अदर थिंग, बट उसको उस तरह से कैटेगराइज करना रागों में और मतलब एक तरह से जैसे कि उस लेवल तक ले जाना, मतलब काफ़ी बड़ी बात होगी। तो आपका उसमें क्या व्यू है कि मतलब
0: मुझे लगता है कि पूरा ऑल द क्रेडिट गोज टू वो हमारी जो एंशिएंट विजडम है, जो शायद हम बहुत किस्मत वाले हैं, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम एक ऐसी सभ्यता में पले बड़े हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, 5,000 साल पुराना, जो उनके पास जो आज लोग बड़े रिसोर्सेज लगाते हैं R&D करने में उनका R&D इतना पुराना है और इतना गहरा है, इतना डीप है, वो चाहे वो ज्योतिषी हो या वो संगीत हो, वो मैथमेटिक्स हो, यू नो, वो एक सिविलाइजेशन हो, वो आर्किटेक्चर हो, वो बहुत गहराई में जा चुके थे। और जिस किसी भी उस फील्ड को यदि आज हम पकड़ के उस पुरानी एंशिएंट विजडम को यदि हम आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको यदि हम रिकनेक्ट करने की ट्राई करेंगे, वी विल रियलाइज कितना आसान है उसको आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेम्प्रेरी सर्कमस्टांस में भी उसको कनेक्ट कर पाना, वो आज भी आसान है, वो आज भी रेलेवेंट है ना? तो आई थिंक बहुत डीप साइंस रही है, बहुत डीप साइंस रही है। और मैं अंडरमाइन नहीं करता किसी भी और म्यूज़िक को, वो सब अपने अपने जो भी म्यूज़िक कर रहा है किसी भी लेवल पे कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, कि हम सब एक ही पथ के राही हैं, हाँ थोड़ा सा आगे और पीछे हैं, बस इतना ही फ़र्क है।
1: नहीं, मेरा मतलब अंडरमाइन करने का नहीं था, मेरा मतलब ये था जी कि हमारा जैसे कि मतलब वेस्टर्न म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा मतलब उनका स्क्रिप्ट बेस्ड है, मतलब आपका नोटेशंस और वो सब आए, हमारे इसमें उतना नहीं आया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरा, क्योंकि हमारा एक मैथमेटिकल फार्मूला टाइप का आया कि ये राग का मतलब ये फार्मूला आपका है, ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो वो आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप उसको पूरा का पूरा मतलब शीट बना के पूरे नोटेशंस मतलब हर चीज़ के लिखें।
0: हाँ नहीं, आप सही सही कह रहे हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट वाइज जैसे, हाँ करेक्ट, वो हाँ। जैसे एक नोटेशन लिखा हुआ है हमारा, शायद क्योंकि शायद हमारा बेस जो हमारे भी जितने भी रागों में देर आर हंड्रेड्स ऑफ दोज राग्स है ना, मगर राग भी एक तरह का नोटेशन ही है, हाँ। एक तरह का नोटेशन है, तो मैं 7 सुर लगा रहा हूँ वो पूर्ण राग है, या मैं 6 सुर में एक राग ले रहा हूँ वो मेरा षडज राग है, या मैं 5 सुर लगा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली हमारे राग की कैटेगरीज हैं, उसमें कौन सा कोमल लग रहा है, कौन सा तीव्र लग रहा है, और सैकड़ों राग हैं, वो नोटेशन है। मगर हाँ, उसके ऊपर उठकर जो एक राग के ऊपर बेस्ड फिर कितने गाने बन चुके हैं, इट्स एन इनक्रेडिबल साइंस, और बहुत डीप है। मुझे लगता है मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, और यहाँ
2: हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया में बैठकर यदि मैं आज राग के बारे में

0: हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के बारे में यदि मैं आज बात कर पा रहा हूँ तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही किस्मत वाला
1: ये बात तो सही है। हाँ, प्रवासी भारतीय होकर।
0: जी
1: अच्छा, तो इसी बात से मुझे याद है, आपका एक प्रोग्राम होने वाला है 27 सितंबर को,
0: जी
1: तो आप उसके बारे में कुछ बताएं, जिस लाइक यू नो, और आप अपना कुछ इसी बहाने कुछ अपना फेवरेट कोई राग का फेवरेट कोई गाना भी हम लोग को सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको।
0: जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं जानता हूँ हमारे साथ सौभाग्य भी आने वाली थी, एंड आई एम डीपली मिसिंग हर राइट नाउ, क्योंकि ये उसकी फेवरेट कन्वर्सेशन होने वाली थी, यू नो व्हिच इज जस्ट वाजंट वेल टुडे। मगर रागे महफिल जो हमारा इवेंट आ रहा है 27 सितंबर को मालवन थिएटर के अंदर, वहाँ पर हम लोग अपना कॉन्सर्ट कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक हमारे दरवाज़े खुल जाएंगे सभी सुनने वालों को अंदर आमंत्रित करने के लिए। जो जो टीम है, हम 4 लोग हैं जिनमें से हमारी फीमेल लीड सिंगर हैं सौभाग्या, सौभाग्या राव, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल में मेवाती घराने से बहुत ही वेल ट्रेंड म्यूजिशियन है वो। उसके बाद हमारे साथ हैं हितेश हमारे लीड गिटारिस्ट हैं, और जब मैं सुनता हूँ उसको मुझे लगता है भाई तो यार पैदा होते गिटार बजाने लग गया था। और ही प्लेज सो वेल, किसी एक गाने की 10 तरह के स्ट्रमिंग पैटर्न्स वो, मुझे भी गिटार का बहुत शौक है मगर जब वो बजाता है मैं कहता हूँ यार तू ही बजा, मैं आई लव टू लर्न फ्रॉम हिम एंड ही इज़ अमेजिंग अमेजिंग। हमारे तीसरे जो सह कलाकार हैं वो हैं वैभव अंशु, और वैभव का तो क्या ही कहना, वो 70+ इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर सकते हैं, और सिर्फ प्ले करना नहीं, वो बाकायदा बहुत बढ़िया प्ले करते हैं, यू नो। और साथ में वो कव्वाली के, गज़ब के शौकीन हैं, और जब वो कव्वाली में अपने वोकल्स का इस्तेमाल करता है, यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, तो मैं इनफैक्ट इन तीनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे लिए फ़ैन मोमेंट है कि मैं इन तीनों के साथ साथ में वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी, मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम टीम, है ना। तो मैं इनके साथ जुड़कर कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आई विल बी द लीड वोकलिस्ट, जो उन तीनों ने मुझे सम्मान दिया है, मेरे लिए वो ऑलरेडी एक अचीवमेंट है। तो रागे महफिल एज अ कंसेप्ट, इसका ये मतलब है कि हम लोग काफ़ी पिछले कुछ समय से, हम लोग बहुत सी हिंदी म्यूज़िक से रिलेटेड हम काफ़ी इवेंट्स वगैरह देखते और सुनते आए हैं, तो मैंने देखा कि 2 तरह की स्पेसिफिक इवेंट्स हो रही हैं। कुछ बहुत पुराने 60s 70s के गाने हो रहे हैं जिनको हम एज इट इज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बेहतरीन, बहुत अच्छा, रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता जी, आशा जी, उनके गाने, उसको यूं का यूं अपने वर्जन में इंटरप्रेट कर पाना, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग एफर्ट। देन देर इज़ सम लाइट म्यूज़िक अगेन जो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं एक जो मेरा अपना, मुझे अपना पर्सनल फेवरेट जॉनर लगता है वो है कि बॉलीवुड सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स, जिन जो डीपली इनग्रेंड हमारे रागों पर हैं, और साथ में हमारा कुछ सूफी म्यूज़िक जो कवालियों से, जो नुसरत साहब ने या पुराने जितनी कवालियाँ निकली हैं उनको मॉडर्नाइज करके आज की जनरेशन तक पहुंचा पाना कि वो भी किस तरह से रागों से ही बेस्ड हैं, और वो किस तरह से कितने डीप, कहीं मीरा के भजन हैं और कहीं बहुत गहरे फैज़ अहमद फैज़ के शेर व शायरी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो बहुत ही डीप म्यूज़िक है। तो उस सेमी क्लासिकल को और सूफी को साथ में पिरोकर दर्शकों के सामने एक नए रूप में प्रेजेंट कर पाना, मुझे लगता था कि अगर मैं कर पाया तो सबको तो पसंद आएगा ही आएगा, और हम सबकी अपनी पर्सनल म्यूजिकल जर्नी वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटेंस हो जाएगी।
2: तो हम सब बहुत इंतजार कर रहे हैं इस प्रोग्राम का।
0: नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्ट। और इसमें जैसे आपने कुछ था एग्जांपल, तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कि हम राग जोग की बात करते हैं, है ना, तो एक राग है बहुत ही, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा राग है जो रात के वक्त गाया जाता है। तो राग जोग, इसमें 5 ही सुर लगते हैं, और ये एयर रहमान साहब का बड़ा ही फेवरेट राग है।
1: अच्छा।
0: तो इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। अच्छा। जी, तो हम जब ऐसे इसका फॉर्मेट कर रहे थे तो उसमें अचानक ये निकल के आया कि वो राग जोग हम गुनगुना रहे थे, मैं और सौभाग्य, ऐसा कुछ हुआ था जिसमें वो चल रहा है

है ना, और इस राग का रहमान साहब ने इतना यूज किया दिल से रे दिल से रे दिल से रे

0: देख रहे हैं राग और कैसे रहमान साहब ने इसको और इन्होंने वो बिगा रखा है, लगान मूवी का गाना था ना वो नहीं नहीं राग का इसी का एक गाना है लगान मूवी का ही याद नहीं आ रहा मुझे मैं, हाँ जी रहमान साहब ने इस गाने को बहुत यूज़ किया है वो आप इस चलाचल कह रहे हैं वो स्वदेश का है वो भी कहीं ना कहीं राग जोग से ही प्रभावित है वाह जी वाह तो ये राग जोग की बात हुई ये राग महफिल की बात हुई आप सभी सुनने वाले से सभी सुनने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास टाइम है थोड़ा सा भी और संगीत के प्रति कुछ भी रुचि है तो प्लीज़ ज़रूर आएँ और यदि आपके आने वाली जनरेशन वो सब संगीत में रुचि रखते हैं तो उनको मॉडर्न म्यूज़िक कॉन्टेम्प्रेरी फ्यूजन विद द इंडियन यू नो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक उसके साथ आकर उन्हें बहुत बहुत मज़ा आने वाला है।
1: ये बात मैं उठाने वाली थी कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको हम लोग कैसे मतलब कि आपका इसमें क्या विचार है किस तरह से हम लोग को उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं जैसे हम देखें लोक संगीत आजकल कम होता जा रहा है
0: जी।
1: जैसे इंडिया में भी अब जैसे पहले हमेशा शादी ब्याह में घरों में अपने होता अपना घर में महिलाएं अपने बच्चा हुआ कुछ भी हुआ तो एक चल रहा था धीरे धीरे वो प्रथा कम होती जा रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है विलुप्त हो जाएगा हम सिर्फ सीडी में कभी कभी कोई सीडी मिल जाएगा या सॉरी सीडी नहीं कभी यूट्यूब में कुछ सुन लेंगे तो कहीं ऐसा मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारी जनरेशन तो हम जानते हैं पर ये हमारे आगे वाली जनरेशन को हम किस तरह से इसमें ये तो आपका बहुत अच्छा ख्याल है कि उसको किसी तरह से फ्यूजन करें ताकि उनको इसमें इंटरेस्ट आए पर इसमें और आपके और क्या ख्याल हैं इसमें आपको एलैबोरेट करने को बोलूँगी इसके ऊपर
0: मुझे लगता है कि जो जनरेशनल चेंजेस जो भी आएंगे इट्स लाइक अ रिले रेस हम भाग रहे हैं और हमें बैटन वो अगली जनरेशन को देना है ना ज़रूरी नहीं है कि उनको सेम एग्जैक्टली सेम वे में वो चीज़ उन्हें पसंद आए तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वक्त को समझते हुए उसी चीज़ का एक नया रूपांतरण आगे एक बैटन के रूप में रिले रेस के पार्ट में हम आगे जनरेशन को दे पाएँ जो देखिए जो मास्टर जो ट्रू क्लास जो बन चुके हैं जो मास्टरपीसेस बन चुके हैं उनका सच में कोई जवाब नहीं है कोई जवाब नहीं है मगर उस तक पहुंचने के लिए दोबारा से उसका एक नया रूपांतरण जो आज के लोगों को इजीली समझ में आ जाए वो कर पाना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है तो कहीं ना कहीं रागे महफिल उसी में एक प्रयास है क्योंकि यदि हम सूफी गानों की बात करेंगे यदि मेरा के भजन की बात करेंगे तो सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम वो जब नुसरत साहब ने गाया था वो शायद आप या मैं समझ पाएंगे आगे मेरे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे तो उसको सिंप्लीफाई करके यदि मैं आज उन तक पहुंचा पाऊंगा बिलीव मी वो ज़रूर एक दिन उसका मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड द प्योरर वर्जन सुनना चाहेंगे है ना
1: नहीं मैं इसमें
0: तो वो जरूर होगा
1: कॉन्फिडेंस आ रहा है आप जो कह रहे हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ शुरुआत में उनको इतना ज़्यादा नहीं था पर अब धीरे धीरे वही बच्चे म्यूज़िक सुन रहे हैं पहले से तो हो गया कि म्यूज़िक सुन रहे हैं और कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक सुन रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है यदि उनको राइट ढंग से उनको एक्सपोज किया जाए म्यूज़िक पर तो हमारी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि हमारी विलुप्त ख़त्म हो
0: देखिए
2: बहुत बड़ा टॉपिक एक्चुअली खोला है
0: जी
2: क्योंकि हमारे साथ दो चैलेंज है
1: एक ज़्यादा नहीं था पर अब धीरे धीरे वही बच्चे म्यूज़िक सुन रहे हैं पहले से तो हो गया कि म्यूज़िक सुन रहे हैं और कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक सुन रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है यदि उनको राइट

0: कभी मौका नहीं मिला या जो भी हो, मतलब जो भी सरकम
1: जी जी
0: तो एक वो अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मैथमेटिकल फार्मूला हर राग का है वो लोगों को उतना आसानी से नहीं पता है। दूसरा क्या रहा कि म्यूज़िक जो था वो हमेशा एक तरह से बड़ा क्लासिकल म्यूज़िक, एक एलीट टाइप का वो देखा गया, मतलब अलग उसमें। तो वो जो जनमास के लिए लाने के लिए, जैसे कि आप गज़ल ले लीजिए, गज़ल को जब तक जगदीश सिंह जी नहीं लेके आए तब तक वो बड़े ऊपर की मतलब मानी जाती थी कि आपको मतलब एक अलग इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आपका ये जो विचार है कि राग रागे महफिल जो है इसको एक तरह से मल्टीपल फेजेस में काम करना पड़ेगा। एक फेज़ होगा जहाँ कि आप उन रागों को समझाएं, दूसरा फेज़ है कि उन रागों को उनकी भाषा में समझाएं, मतलब उस एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि यंग जो है, क्योंकि म्यूज़िक का जो है, म्यूज़िक की लैंग्वेज तो कोई होती नहीं है
1: बिल्कुल,
0: बट उसके भाव जो हैं वो आप
1: कैप्चर कर सकते हैं,
0: कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसके पहले कि बहुत सीरियस हों, तो मेरे ख्याल से आप अपना एक कोई पसंदीदा गीत तो सुनाइए।
2: आप सूफी की बात करते हैं, यदि आपके मन में कोई सूफी गीत आ रहा हो तो हम बड़े अच्छा लगेगा सुनने को।
1: सूफी
2: या जो भी आपकी इच्छा करे।
1: नहीं, मैं सुना देता हूँ, हम रागे महफिल का ट्रेलर हो जाएगा। मैं गिटार उठा लेता हूँ,
2: है ना,
1: आई थिंक। और सुनने वालों ज़रा माफ़ कीजिएगा, आज सारा दिन काफ़ी हम प्रैक्टिस करके हमारे गले थक चुके हैं। तो यदि सुर ऊपर नीचे हो तो माफ़ कीजिएगा।

ये एक बहुत पुरानी कव्वाली है जो आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में हम एक नए वे में प्रेजेंट करने वाले हैं। इसका छोटा सा ट्रेलर है।

0: Just an attempt. Thank you.
1: जी बहुत बढ़िया गाया है. तो अभी हम लोग जब बात ही कर रहे थे तो मैं ऐसे ही पूछूं कि आपके पास ऐसा कोई कहानी है कि जो आपको, या कोई ऐसा गीत है जिसको सुनते ही आपको कोई, हम ऐसी थोड़ा उसको रोचक टर्न देना चाहते हैं. हमने कहा कि बहुत ज़्यादा राग की बात
0: जी.
1: तो कोई आपको ऐसी कोई याद है कि कोई या गीत सुन के आपको कोई इंसिडेंट याद आ जाता हो, या कोई इंसिडेंट किसी व्यक्ति को देख कर कोई गीत याद आ जाता हो?
0: ये तो आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुत से खूबसूरत गाने और बहुत से खूबसूरत लम्हे याद आ गए. मुझे लगता है मेरा तो जब मैं बहुत ही छोटा था, आई थिंक 5-6 साल का होऊंगा शायद, तो मुझे वो मेमोरी इतनी क्लियर मेरे दिमाग में है. मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, रेडियो पे एक कैसेट चल रही है, उस कैसेट में है लीडर और दिलीप कुमार साहब की दूसरी मूवी जिसमें वो गाना है लीडर है और साथ में उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वो कौन सी मूवी है, तर रे रे दिन मेरी है,

0: तो ये वाली दो मूवीज थी, और खाना बन रहा और साथ में ये गाना चल रहा है, रफ़ी साहब के गाने उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ये चल रहा है। लीडर के गाने कुछ एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, है ना, ये कुछ गाने चल रहे हैं। और जब भी ये गाना सुनूं तो मैं आज भी उसी रसोई में पहुंच जाता हूं, और वही गरम गरम रोटी, उसके ऊपर घी लगा हुआ और उस रोटी की महक मेरे मेरी नाक में, और वो उस रोटी को फूलती हुई को रोकने की उसकी आवाज़ मेरे कान में। आई कैन जस्ट फील माई सेल्फ, जस्ट आई थिंक म्यूजिक हम लोगों को ट्रांसपोर्ट कर देता है हमारे किसी भी पुराने उस वक्त के अंदर।
1: बिल्कुल, आपने हम लोगों को भी तो उसी किचन में पहुंचा दिया।
2: मैं एक छोटा सा अपना किस्सा भी सुना।
0: नया दौर मूवी थी वो, नया दौर याद आ गया। जी जी, नया दौर और लीडर।
2: मेरा ईयर 11 का एग्जाम का मतलब रिजल्ट आया था
0: जी,
2: तो टीचर्स के हिसाब से हम लोग ऐसे स्टूडेंट थे, तो दो हम लोग दो जन थे जो साथ पढ़ा करते।
0: आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, हे भगवान।
2: तो दोनों, और अभी मैं इस फ्रेंड से अभी हाल में ही मिला करीब 10 साल बाद
0: जी,
2: तो हम लोग वही याद कर रहे थे। तो दोनों को तो हुआ क्या कि जो स्कूल का रिजल्ट था उसमें 35 स्टूडेंट थे, तो 16 का फर्स्ट क्लास आया और 19 का सेकंड क्लास आया
0: जी।
2: तो टीचर्स ने बिना देखे ही हम लोग को सेकंड क्लास का बोल दिया।
0: अच्छा, ओके,
2: सीधा सीधा
0: वैलिडेट किया ही नहीं।
2: हाँ, कोई नहीं वैलिडेट नहीं, कोई चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसमें फोन भी नहीं
0: होता, कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर।
2: तो हम लोग उस समय पर जैसे हमारे स्कूल करीबन 8-10 किलोमीटर दूर था
0: जी,
2: तो साइकिल लेके गर्मियों में गए भागते हुए वहाँ पहुँचे
0: जी।
2: रिजल्ट देखा दोनों फर्स्ट क्लास, तो फिर सोचा सेलिब्रेशन होना चाहिए, मतलब बिग थिंग। तो लौट के आए तो एक मूवी चल रही थी, मतलब ऐसी मूवी, उसमें सेलिब्रेशन वाज मूवी, या तो खाना या मूवी। तो हम लोग टिकट लेके बिना सोचे समझे मूवी में घुस गए।
0: वाह जी।
2: और मूवी थी वो देवानंद की, और उस समय पे एक गाना चल रहा था जो गाना बाद में मेरी पूरी लाइफ का वो बन गया, वो था मैं जिंदगी का साथ। तो मेरा आग्रह आपसे है कि आप एक बार वो गाना थोड़ा सा।
0: अरे सर, मेरे ओ भाग गए ये तो। और आपने बोला है तो मेरा भी फेवरेट गाना है। आप जानते हैं कि देवानंद साहब का फेवरेट गाना यही है।
1: रियली?
0: जी, उनसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि ये रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गाना, ये उनके लाइक जिंदगी का एक उसका एक पूरा क्रक्स है।
1: हाँ, ये अमित भी ऐसे ही बोलते हैं।
0: मुझे भी ऐसा ही फील होता है।
1: और ग्रेट लीडर सिंगल।
0: और अभी आने से पहले मैं और सौभाग्या हम बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा गाना जो आपको कहीं ले जाए। शी सेड अबाउट द सेम, शी मेंशनड द सेम सॉन्ग।
1: क्या बात है, फिर तो कोई
0: सौभाग्या, वी आर मिसिंग यू।
1: ये गाना प्रॉपर्ली गाया
0: जी जी जी।

बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था मनाना फिजूल था मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों।

0: नहीं थैंक यू, ये तो मेरा भाग्य सर, आपने ये गाना मुझे गाने के लिए बोला, मेरा खुद ये बहुत ही मनपसंद।
1: एक्चुअली यदि आप इस गाने को 4-5 बार सुन लें
0: जी,
1: तो गाने से ज्यादा इसमें सूफी और कितना कुछ जिंदगी का, सब पूरी जिंदगी का, ये तो सब
2: जैसे
1: जिस मतलब जब भी लिखा गया होगा ना उसमें,
0: तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया,
2: कितने डीप गाने हैं आप देखिए,
0: कसम से बिल्कुल
1: खो गया
0: उसको भुलाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया।
2: एक-एक लाइन में कितनी गहरी लाइन है,
0: बहुत बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, अमेजिंग। नहीं थैंक यू, तो आपने मेरा दिन बना दिया।
2: तो हम लोग जैसे इसकी बात कर रहे हैं, एक और कि मौसम के हिसाब से भी आपके अपने गाने बदलते रहते होंगे, तो
0: ठीक बात बोल रहे हो वैसे आप, है ना, थोड़ा रंगीन और आशिकाना मौसम हो तो अचानक याद आता है।

0: एक तरह से आप ये सब जब गाने सुनते हैं तो आपका ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, मतलब उस जब वो गाना सुना होगा या कुछ किया होगा। तो कुछ साल पता, अभी मैं बहुत सालों से कार ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मतलब शाम को
1: जी।
0: तो पहले क्या होता था, 4 से 4:30 तक या 4:30, मतलब उस टाइम पे, मतलब 4 से 5:30 के बीच में या 6 के बीच में जो ABC का प्रोग्राम आता था
1: जी,
0: तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि हर फ्राइडे को कोई जैसे ऐसे इंसिडेंट्स लेके उसको कैसे साउंड, मतलब वो गाना या वो ट्यून से कनेक्ट करते थे।
1: ओके
0: तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है कि लोगों को अपने 10 गाने चूज कर लेने चाहिए जो उनको अपलिफ्ट करते हों, एंड दे शुड बी इजीली अवेलेबल, कि मतलब ये गाना सुनते ही आपका मूड जैसे फ्रेश हो जाता हो। तो
1: आई नो तो वही, जैसे शुरू में बात की थी कि थेरापिटिक, मतलब म्यूजिक कितना थेरापिटिक है।
2: उसी से मैं एक, जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना कि जैसे दीपक राग है या जो भी कितने, जो जैसे पुराने बोलते कि निया तानसेन गाते थे दीपक जल जाते थे, या मेघ मल्हार गाया तो बारिश, तो इसमें क्या, मैं सच में ऐसा, डू यू थिंक आप एज अ म्यूजिशियन जो काफ़ी अकम्पलिश म्यूजिशियन है, आप क्या सोचते हैं सच में ऐसी है क्या संगीत में पावर, मतलब है, बहुत पावरफुल है, आई नो दैट, पर इतनी पावरफुल है कि नेचर भी आपके साथ हो जाए, मतलब आपको क्या लगता है?
1: देखिए, जब हम रागों की डेप्थ की गहराई की बात करें और हम तानसेन जी से उनके बारे में जिक्र करें, तो मैं तो इतना अदना इंसान हूँ कि कोई औकात नहीं है मैं कुछ बोल भी सकूँ कि वाकई उन्होंने वो किया होगा या नहीं किया होगा। लेकिन मेरा तो बहुत पूरा यकीन है कि हम एज ए सेड इनिशियली कि हम लोगों ने राग नहीं इन्वेंट किए, हमने सिर्फ डिस्कवर किए हैं, वो एग्जिस्ट करते थे। हमारे राग भी देख लें, राग पहाड़ी है ना, सब राग कहीं ना कहीं नेचर से ही निकले हैं। तो वो सुरों का संकलन ही कुछ ऐसा है जो उसी तरह की एनर्जी है कि वाकई जैसे कि घनघोर बारिश हो रही है ना, वो उसी तरह की एनर्जीज को कॉल डेफिनेटली करेगा। वो पहाड़ी राग, वो जो एक पहाड़ी से जब कोई पुकार रहा है और वो जो गूंज आ रही है ना, वो उस राग का बेसिस है, उस नेचर से वहीं से लिया गया। या कुछ पत्तियों की सरसराहट है, या जहाँ पर कुछ विरह की बात है ना, या कुछ शरारत का है तो राग बिहाग आ रहा है, वो सब उन भावों से उठाकर, वो जो नेचर में एग्जिस्ट है, वो कुदरत में विद्यमान है, हमने सिर्फ उनको वहाँ से उठाया है। तो मेरा पूरा पूरा पूरा विश्वास है कि वो है, वहाँ पर है। हाँ, मैं या बहुत से हम जैसे बहुत से लोग अभी तक बस वहाँ पहुँचे नहीं हैं उस चीज़ को खुद विटनेस करने के लिए, मगर रास्ता वही है, शायद इस ज़िंदगी में शायद एक दिन वो विटनेस मैं कर पाऊँ कि हाँ, जब मैं गा रहा हूँ उस वक्त कुदरत जो मेरे आसपास है वो उससे हैवीली इम्पैक्ट होकर उसी राग की डायरेक्शन में जा रही है। वो मेरे राग की, मेरे सुरों की सच्चाई पर निर्भर करता है, उनकी गहराई पर निर्भर करता है।
2: प्रार्थना की सच्चाई होती तो भगवान भी सुन लेता है ना।
1: जी जी जी।
0: और अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बात हो रही थी कि साउंड थेरेपी मीन्स कि आपके बॉडी को अलग अलग साउंड से कैसे, मतलब वो किया जा सकता है, मतलब और उनकी थ्योरी बड़ी सिंपल लगी मुझे, बट आई डोंट नो, मेरे को कोई आइडिया नहीं कितनी सच या झूठ है। उनके ये कहना था कि हमारी सबकी अपनी वाइब्रेशंस होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, और यदि आप म्यूज़िक या साउंड के थ्रू उस फ्रिक्वेंसी को से ट्यून कर लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, वो मतलब बीमारियां का भी बात कर रहे थे कि वो उससे आपको, मतलब एक तरह से मेडिसिन वैल्यू ला सकते हैं,
1: थेरेप्यूटिक वैल्यू है।
0: तो मेरे ख्याल से काम तो चल रहा है, पर देखिएगा।
2: मुझे लगता है स्कूल में म्यूजिक का भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? जैसे साइंस और मैथ्स में हम लोग कहते हैं बच्चा हुआ नहीं कि चल मैथ्स माइनस करो सब प्लस करो,

0: तो म्यूजिक को आपको डू यू थिंक कि उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि अगले के ऊपर छोड़ देना चाहिए?
1: देखिए, एज ए म्यूजिशियन मैं तो चाहूँगा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मगर साथ साथ मुझे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि जब मैंने रियलाइज़ किया है कि म्यूज़िक हम लोगों के अंदर उसकी समझ या तो है या नहीं है, है ना? और जिनके अंदर है समझ वो वाकई भगवान ने कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई थेरेपी हो सकती है। तो आई थिंक ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी स्टेज पर जो ऊपर इवॉल्व कर गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं म्यूज़िक ऑलरेडी गिफ्ट में मिल चुका है, है ना? वो चाहे डांस की फॉर्म में हो, विच इज़ ताल, बीट है ना? यदि वो डांस को, उस बीट को, उस ताल को पकड़ पा रहे हैं तो वो म्यूज़िक के उस लय के साथी हो चुके हैं, या वो सुर के यदि साथी हो चुके हैं तो वो गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, अरे दोनों का साथ हो चुके हैं तो एकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन हो चुके हैं, सुर और ताल का जो मिश्रण हो चुका है। जो उस हद तक नहीं पहुँचे हैं अभी, वो भी आई फील सॉरी फॉर देम।
2: मेरे ख्याल से म्यूजिक में एक जो सबसे बड़ी बात है कि इट्स ए गिफ्ट।
1: जी एब्सोल्युटली,
2: हर आदमी म्यूजिशियन नहीं हो सकता है,
1: नहीं हो सकता।
2: मैं बहुत अच्छा एग्जांपल हूँ, हमारे फादर ने मतलब सोचा कि चलो बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाए, तो हम लोग दो भाई दो बहन तो आए, जो मतलब हमारे सिटी के जो अच्छे म्यूजिक टीचर थे आए। एक हफ्ते बाद चुपचाप गए मेरे फादर के पास, बोलते हैं कि ऐसा है सर, मैं ना ये लड़कों को नहीं सिखा सकता, इनमें है ही नहीं टैलेंट।
1: नहीं, थैंक्स फॉर मॉडेस्टी, लेकिन मुझे लगता है आप जब तक म्यूजिक को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं तो आपके अंदर म्यूजिक है, आप सिर्फ उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आप उसको फील कर पा रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर म्यूजिक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उसको, उससे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे, जो उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहे।
0: अच्छा, ऐसा भी होते हैं।
1: जी 100% कहीं ना कहीं, और यकीन मानिए मैंने देखे ऐसे लोग, ऐसे हैं लोग जो नहीं समझ पाएंगे म्यूजिक को, जो जिनके लिए शायद सिर्फ शोर ही एक म्यूजिक है, वो सिर्फ उसमें शायद डूबना चाह रहे हैं,
0: है
1: ना, उसमें
0: सुन नहीं रहे हैं
1: जी, उसके अंदर उस शोर में शायद अपने दिमाग के शोर को भी उसके अंदर उसका पार्ट बनाना चाह रहे हैं। अगेन रियली नॉट अगेंस्ट एनी वन, मगर ये एक म्यूजिकल जर्नी है, मुझे पता है कि वहाँ से उनका भी इवोल्यूशन उसके आगे यहीं तक पहुँचना है, पता नहीं इस जन्म में या शायद अगले जन्म में, यह था उससे अगले जन्म में, क्योंकि सोल ट्रेवल्स।
0: फिर से विल हम लोग फिर 27 सितंबर को जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी कोई आपने कोई वो रखी है, कोई थीम्स ही रखी है क्या? जस्ट मैं ये तो मैं ऑफकोर्स सरप्राइज है ऑडियंसेस के लिए, बट फिर भी यदि आप कुछ बताना चाहें उसके बारे में और कि किस तरह से ये वो है, आपने किस तरह से इसको पिरोया है?
1: देखिए मैं मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव है, मुझे संगीत बहुत समझ में आता है, जहाँ एस्थेटिक सेंस की बात आती है ना आई एम हैंडीकैप्ड। कोई चीज़ कितनी एक मतलब एक खाली कमरा यदि है तो यकीन मानिए मैं नहीं बता सकता कि कमरा किस प्रकार से और ख़ूबसूरत लग सकता है ना। तो इसके लिए हमारी टीम है हमारे साथ, बहुत शानदार बड़े ही प्रोग्रेसिव लोग जुड़े हुए हैं जिनके अंदर बहुत डीप एस्थेटिक सेंस है। सोनल जी हैं तो वो उनका बुटीक मीरा कुटूर, उन लोगों ने, उन्होंने ही हमें प्रॉपरली हमें कपड़े पहनाए हैं कि आप ये पहने ऐसा पहने ऐसे ही अच्छे लगेंगे। उन्होंने उनके साथ और लोग उनके जुड़े हुए हैं जिन्होंने मिलके स्टेज को प्रेजेंट किया है, स्टेज को डेकोरेट किया है। तो मैं इस काम से बहुत दूर हूँ और शुक्र है मैं दूर हूँ, कि यकीन मानिए यदि मैं उस काम में होता आपको शायद संगीत तो अच्छा लगता मगर वहाँ की एम्बियंस नहीं नहीं नहीं। तो जिसका काम उसी को साझे, मगर हाँ जो जो टीम ने सोनल जी ने उनकी टीम ने उन सब ने जो जो डिसाइड किया है तो एक बहुत ही महफिल वाला एक खूबसूरत सा एक वातावरण वहाँ बनने वाला है, जहाँ पे नहीं मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, इससे आगे सस्पेंस लीक हो जाएगा।
0: नहीं, नहीं, बिल्कुल, हम सस्पेंस ही रहने देंगे बिल्कुल जी। और आप कुछ और प्रस्तुति, हम लोग अभी बात कर रहे थे आपके आने के पहले कि अभी हम लोग हाल ही में बहुत ही एक लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, तो हम लोग ये उस यात्रा की तो ऑफकोर्स कभी और बैठ के बहुत डिटेल में बातें हो सकती हैं, पर उसको बात जैसे अमित ने बोला उनका एक गाना है उसको देख के मुझे गाना याद आया, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। यदि आपको, वैसे आपको तो बड़े गाने याद रहते हैं, तो आप थोड़ा गा दें तो हम लोग को फिर से
1: आप साथ में गाएंगे।
0: मैं कोशिश
1: करूँ। चलो चलो एक बार गिटार उठाते हैं, लेट्स ट्राई दिस। आपने जो गाना याद दिलाया कभी कॉलेज टाइम में मुझे याद है, हम टेबल बजा बजा के गाने गाते थे। ओके

0: बिल्कुल। और
1: ये शायद मैं 20 साल बाद एक गाना गा रहा हूँ। मगर क्या खूबसूरत गाना है किशोर साहब का, राजेश खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गया है ना,
0: बहुत जबरदस्त
1: अंदाज मूवी थी, इज दैट राइट? अंदाज है ना, शम्मी कपूर जी
0: के साथ, देखिए जैसे हम कहते हैं कोई गाना,
1: हेमा मालिनी उनके साथ पीछे,
0: मालिनी उनके साथ पीछे बैठी है। और इसकी एक्चुअली यादें तो थोड़ी सैड हैं, बट हमारे साथ में एक आंटी आई थी, शी हैड रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड इन द वॉर, उस वक्त पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो मुझे वो जैसे गाना कहते हैं वो जिस सिचुएशन जैसे याद आ जाती है कि हम लोग लाइन में बैठे हैं, मैं, मेरी मम्मी और वो आंटी और उनका एक बेटा भी था छोटा सा, तो वो ही दिखाने ले गई थी शायद उनको, उसमें भी
1: जी,
0: ऐसी कुछ
1: जी जी जी है मालनी, हाँ, शी गेट्स टू जी, शी इज अ विडो, शी इज अ विडो इन दैट,
0: क्या बात है। यही सोचिए जैसे कि हम लोग अभी वो पिक्चरों की याद करके वो दिखते हैं एंड ऑल दैट, आजकल मोबाइल फोन इसके ऊपर कितना गाना हर जगह से हो रहा है, और मुझे जैसे हम लोग को अभी तक याद है एक एक गाने, हम लोग जैसे पुराने, जैसे अमित को याद है हमें कि कौन सा गाने उसके क्या इम्पैक्ट पड़ा था, आजकल हर जगह से इतना, जैसे संगीत का भी मुझे कई बार शोर जैसा लगता है, हर जो रील ऑन करो दो सेकंड में कुछ भी गाना लग जाता है, कभी ये लग गया आपने किस तरह उसको बंद किया तो कहीं और से कुछ हो गया। तो मुझे लगता है डू यू फील कि थोड़ा जाती हुई, मुझे कई बार लगता है संगीत थोड़ा सा शांति रहे तो शायद हो, डू यू थिंक ओवर हो रहा है और ये एक फेज है, फिर बाद में एक फेज में जाके सब कुछ सब कहेंगे अभी बहुत हो गया, लाइक यू नो काम डाउन करें, आई डोंट नो, मैं अपने आप को समझा पा रही हूँ कि नहीं?
1: आप बहुत उम्दा सवाल पूछ रही हैं। देखिए मुझे लगता है संगीत हमें कैसे कनेक्ट करता है, जो मेरे अंदर है वो ही उसी प्रकार के संगीत से मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। मेरे अंदर यदि बहुत शोर है और मेरे दिमाग में बहुत शोर है, अंदर बहुत शोर है और मैं शोर से परेशान हो जाऊँ, मुझे शोर को दबाना है, आई नीड लाउड म्यूज़िक, आई नीड लाउड म्यूज़िक, आई नीड हैवी रॉक, आई नीड, और ऐसा होता है, ऐसा होता है, आई नीड हैवी रॉक, आई नीड समथिंग दैट कैन, जो मुझे मेरे अंदर के उस शोर को सुनने से रोक दे। और जब मेरे अंदर शांति होगी, जब मैं अपने अंदर, जब कोई उथल पुथल नहीं है, एक ठहरा हुआ एक झील की तरह है ना, समंदर नहीं है, एक झील है, जब वो झील है तो मैं अपने अंदर उस चांद का, जो मेरे अंदर जो आत्मा है, मैं उसका अक्स देख पा रहा हूँ, क्योंकि इतना साइलेंट, इतना शिथिल, इतना परिवर्तन के बिना वो जो सतह है मैं सब देख पा रहा हूँ, उस टाइम मुझे बहुत सटल, इजी, लाइट म्यूज़िक, मुझे बहुत जो गहरा म्यूज़िक है, वो गज़ल हो या कुछ भी डीप फिलोसफिकल ऐसा कुछ गाना, मुझे बहुत जिसमें शोर नहीं है, उसमें वोकल्स हैं, उसमें शायद दो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होंगे मगर वो इतनी गहराई से बज रहे होंगे और वो मुझे एक नए लेवल तक ले जाएंगे, एक नई गहराई तक ले जाएंगे। तो हम, तो यदि आप कहेंगे कि किसी स्पेसिफिक जनरेशन में या किसी स्पेसिफिक टाइम में एक प्रकार का म्यूज़िक ज़्यादा पॉपुलर है, इट सिंपली टेल्स द स्टोरी ऑफ दैट जनरेशन, उस जनरेशन में बहुत शोर है या वो जनरेशन बहुत शांत है।
0: ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे समझ में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये जो डिस्को हो रहे हैं लाउड म्यूज़िक, हाउ कैन, आपने सी बोलो अपने आप के अंदर के शोर को दबाने के लिए
1: जी, और वो ज़रूरी है, वो भी उनके लिए वो थेरेप्यूटिक है,
0: उम्र के लिए, वही शायद
1: उम्र, उनके हालात, उनके सरकमस्टांस जो भी है, मगर हाँ जी, मगर वो उनके लिए थेरेप्यूटिक है एंड इट्स हेल्पिंग देम एंड आई नो फॉर श्योर इट्स हेल्पिंग देम। मगर हाँ, उसका इवोल्यूशन में क्यों बोलूँ, या उनका वो फेज़ है जब अंदर शांति होगी तो एक अलग म्यूज़िक ही चलेगा, उनको बाहर भी एक अलग ही संगीत चाहिए ही होगा, तो वो तो होगा ही होगा।
0: आप लिखते भी हैं और मुझे पता है आपकी और भी मतलब टैलेंट्स हैं, जबकि हम संगीत के बारे में बातें कर रहे हैं, पर मैं इसलिए आप इतने मल्टी टैलेंटेड से बात करें, तो आप कभी ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसी कोई स्टोरी सुनाएं जिसमें आप गानों के साथ का कहानी भी हो, और शायद आपने करी भी हुई हो, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि आपके इतने हैं, तो आप कभी उन सब का समागम करके आप कभी या उसी का एक प्रोग्राम करें अपने स्टोरीज का, आप जो उसको यूट्यूब पे करें चाहे कहीं करें, या आपने क्या सोचा इस बारे में? मैं सही बात
1: आगे नहीं, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, लिखने का आपने सही बोला, मुझे लगता है भगवान ने बड़ा ही अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे लिखने का और म्यूज़िक का बहुत शौक है, और दोनों ही एक ऐसे वेंट करने के ऐसे ज़रिए हैं जिनके थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी सब चीज़ें व्यक्त कर सकता हूँ इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे, जो कि मुझे जब ये कुछ लिखते हैं या कुछ रिकॉर्ड करते हैं और मुझे खुद सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अब हमारी अपनी परछाई से मिलवाता है ना, एक आत्म साक्षात्कार की तरह है वो। तो इनफैक्ट एक पॉडकास्ट शुरू भी किया था विजडम और विशाल नाम से, वो उसके दो सीजन चले थे. इट वॉज ऑल अबाउट सम शॉर्ट स्टोरीज, कुछ लघु कथाएं थी जो हमारी जिंदगियों से कनेक्टेड थी, जिसमें कुछ कह रहे थे और लोग उस एक सवाल पूछा जा रहा था और लोग उसका जवाब दे रहे थे. रागे महफिल भी कहीं ना कहीं इसी थॉट का एक पहला पड़ाव है.
0: अच्छा.
1: तो रागे महफिल, जब हम बात करते हैं राग, ऑब्वियसली म्यूजिक है, मगर जब महफिल की बात करते हैं तो महफिल क्या है? महफिल तो संवाद, अल्फाज, जज्बात, लोगों का इकट्ठे होना, एनर्जीज, एम्बियंस, लाइट, म्यूजिक, एवरीथिंग टुगेदर, है ना, कहानियाँ सब उसके अंदर है, शेर और शायरी, कविताएँ, सब उसका एक समन्वय महफिल है. तो रागे महफिल कंसेप्ट इसी से ही निकला हुआ है. इसमें जो पहले सीजन में पाएंगे, इसमें भी हम, मैं थोड़ा सा सस्पेंस रिवील कर रहा हूँ कि इसमें कुछ शेर और शायरी इसके अंदर होगी. एंड एज वी ग्रो, एज वी गो फर्दर, जी, इसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी मिलेंगे. जब हम संगीत को और कहानियों को एक बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे में पिरोएंगे और उसको आगे फर्दर प्रेजेंट करेंगे. तो आपने बेसिकली जो आपने सवाल पूछा है, आपने ऑलरेडी रागे महफिल सीजन 2 का एक सवाल पूछ
0: क्या
1: लिया.
0: क्या बात है, तो वेरी एक्साइटेड जी आपकी रागे महफिल को सुनने के लिए. आपने जितना बताया
1: जी,
0: इट इज गुड. और
1: ऐसा होगा, ऐसा ही हमारा रास्ता है. और सब अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे बड़े टैलेंटेड लोग हैं आसपास जिन सबसे जुड़ रहे हैं, है ना. और थैंक्स टू पीपल लाइक यू, जो आप अप्रिशिएट करते हैं, जब आप जो हौसला बढ़ाते हैं, बिलीव मी, इट मींस अ लॉट. और मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि कोई उसको अप्रिशिएट करने वाला, उसको समझने वाला, सुनने वाला नहीं है, तो कलाकार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता.
0: कह सकती हूँ, मतलब मैं इस तरह की कला नहीं करती हूँ, पर मैं भी जो करती हूँ, मैं समझ रही हूँ उस बात को पूरी तरह से कि अप्रिशिएट करने वाला तो आदमी का सीधा चौड़ा हो जाता है.
1: जी, जी, जी.
2: एक और बहुत अच्छी चीज़ जो है अभी मेलबर्न में
1: जी,
2: कि हर तरह के म्यूज़िक के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं
1: जी.
2: क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल
1: जी,
2: फुली मतलब फिल्मी म्यूज़िक एंड एवरीथिंग. और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं.
1: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली.
2: क्योंकि मतलब एक रैंडम वो नहीं है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है. और मेरा यही ख्याल रहेगा कि एक समय पे ये सब एक साथ एक मंच पे आए.
1: क्या बात है.
2: और एक तरह से वो एक जो होते हैं ना हमारे झांकियाँ, अलग अलग झांकियाँ वो होती हैं.
1: क्या बात है.
2: तो हमारे म्यूजिक की वो जितना कितना रिच कल्चर है, उसकी वो जो अलग अलग झांकियां जब आप दिखाएं, तो
1: बहुत खूबसूरत विचार है आपका. वाह, आपने इतना, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस डायरेक्शन एज वेल. बहुत खूबसूरत है, आप सही कह रहे हैं. और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टाइम मेलबर्न में मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ और एक से एक धुरंधर लोग हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा करते हैं. और मुझे लगता है यदि मैं जाके उनको नहीं सुनता हूँ तो आई एम मिसिंग आउट ऑन लर्निंग. बहुत बहुत ज़रूरी है उनसे सुनना, उनसे समझना. और यदि हो सके तो, ऐसा आपने कहा, यदि हम किसी दिन हम ये टीम बना सके, सब मिलके एक दिन हम कर सकें ऐसा कुछ, तो झांकियों की तरह, जैसे आपने कहा, कोई एक किसी और म्यूज़िक का एक स्टाइल प्रेजेंट कर रहा है, कोई कुछ प्रेजेंट कर रहा है, और एक सब का एक दिन शो बन सकता है.
0: जी, मैंने पहले बोला लोक संगीत का, मेरे को तो इस बात का बड़ा दुख होता है क्योंकि लोक संगीत में एक कनेक्ट हार्ट से कनेक्ट करती है, बड़ी सिंपल होती है. और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आजकल कोई इसको अप्रिशिएट उतना है, या हो सकता है इसलिए नहीं करता क्योंकि पहले कोई भी ऐसे गा देता था बिना राग के, तो उसके
2: नहीं. अभी जैसे एक मैं सुन रहा था, हनुमान अंश पे एक गीत है पार्वती के ऊपर, मतलब
1: जी.
2: और वो मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो बुंदेली में है.
1: अरे वाह.
2: बुंदेलखंड से हूँ और मेरे फादर ने सागर यूनिवर्सिटी में बुंदेली पीठ शुरू किया था.
1: क्या बात है.
2: आज से करीबन 65 साल पहले.
1: वाह.
2: मतलब 65 इयर्स बैक. तो उनके बहुत सारे, उनकी जो बुक्स हैं तो उसमें बहुत सारे बुंदेली के लोकगीत हैं
1: जी.
2: और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से लोगों को ढूंढूं जो कि उन लोकगीत को उसी भाव में गा सकें.
1: क्या बात है.
0: क्योंकि बहुत मीठी,
1: इतनी बहुत मीठी भाषा है बुंदेली
2: वो है. और सबसे बड़ा क्या होता था कि हम लोग का मतलब, तो सागर जो एक सिटी है, तो उसके बीच में एक लेक टाइप की है, तालाब है, और हम लोग का घर थोड़ा सा उसके पास ही था। तो कई बार शाम को जो ये नाव चलाने वाले होते हैं ना, नहीं तो वो क्या करते थे, इकट्ठे बैठ जाते थे एंड दे विल सिंग।
1: क्या बात है।
2: और वो मैं मिस ये चीज़ को करता हूँ कि उस समय पे यदि हमारे पास ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती तो
1: मगर टैलेंट अभी वहाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैंने देखा राजस्थान के अंदर अभी भी कई जो पुराने लोग जो कला को लेकर आ रहे हैं, एंड देन पीपल आर नाउ गोइंग एंड फ्लॉकिंग टुवर्ड्स देम, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। और
0: हम जाने का टाइम भी आ रहा है, तो
2: एक घंटा तो पता ही नहीं
0: चलता। इतने अच्छे थॉट
1: क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी
0: पार्ट टू पार्ट थ्री, अब हम लोग ऐसे चखा रहे हैं ये रागों का।
1: इट्स बीन एन आवर, तो बहुत बहुत मजा आएगा आपके साथ, हमेशा ही बहुत मजा आता है।
2: तो सुनने वालों, यदि आपने अभी तक टिकट नहीं बुक किया है,
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
0: ट्राई बुकिंग पर आपको ये टिकट मिल जाएंगे
1: जी।
2: वैसे हम लोग एडवर्टाइज तो नहीं करते हैं, बट हम इस अपॉर्चुनिटी को भी नहीं मिस करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स सभी सुनने वालों को। रागे महफिल में आए जरूर यदि आपके पास वक्त हो तो।
3: And has been asked about the prospect of a unified Ireland.
4: I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
3: We'll hear why that led reporters to gasp with surprise. Saudi Arabia has shut a key oil pipeline after a drone attack launched from Iraq. Can the Saudis or the Iraqi government take down the militias launching these attacks? We'll hear from Ukraine's oldest literary festival, as questions remain on the use of the Russian language in Ukraine.
5: I think that describing Russian as a minority language in Ukraine is not quite accurate, because the Russian language was imposed on Ukrainians for so long.
3: And why Wembley Stadium in London will tonight be filled with music-loving Punjabis, all coming up after the news.
6: I'm Debbie Russ with the BBC News. At the start of a two-day visit to Ireland, Donald Trump has said he would love to see the unification of Northern Ireland and the Irish Republic, and expressed the view it would happen eventually. The American president was speaking at a press conference with the leader of the Irish government, Micheál Martin.
4: I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. You know what? The way I look at it, it's going to happen eventually. It will happen now. We're talking about it, and you got the right man over here to get it moving. But yeah, I think it would be a fantastic thing. Now the UK will have something to say about it, obviously, but I think it would be a great thing. I mean, how can it be bad?
6: The 1998 Good Friday Peace Agreement states that Northern Ireland will remain part of the United Kingdom unless a majority of the people in both the province and the Republic of Ireland support constitutional change. Mr. Trump also said international oil prices would tumble when the US conflict with Iran ends. Questioned by reporters, he repeated that he thought the conflict wouldn't conclude until after the US midterm elections in early November. Pro-government forces in Yemen say they've struck Houthi positions in the strategic coastal city of Mocha after the Houthis seized control of the entire Red Sea coast on Friday. The territorial gains by the Iranian-backed Houthis threatened to block a vital artery for Saudi oil tankers. Earlier, Saudi Arabia said it would not retaliate for now after drone attacks launched from Iraq forced it to shut down a crucial east-west pipeline, which further restricts its oil exports. Hugo Bishager is in Jerusalem.
7: Saudi Arabia has relied on its key east-west pipeline and the Bab al-Mandab for oil exports as an alternative to the Strait of Hormuz, which has been effectively closed because of the US war against Iran. But with the Houthis threatening to blockade Saudi shipping, global energy supplies could be squeezed even further. This could help Iran's strategy of driving up prices to put pressure on the US to end the war. The latest fighting also risks reigniting the civil war in Yemen.
6: A second employee of the AI firm Anthropic has quit over concerns that humanity may not survive the race to develop machines that are smarter than humans. It comes days after another researcher at the company also resigned. Clitzia Sala reports.
8: Joe Benton, formerly a member of Anthropic's safety team, has taken to social media to condemn what he sees as too little investment by AI companies in safety. He warned that AI systems may develop capabilities and desires that humans can't foresee and control. Humanity, he suggested, may not even survive the transition to superintelligent AI. Mr. Benton called for transparency about the ability of AI models to improve themselves, as well as safety incidents and near misses.
6: BBC News. China's President Xi Jinping has said the war in the Middle East has caused serious losses to people across the region. Speaking at the BRICS summit in India, Mr. Xi said the conflict did not serve the common interests of the international community. 11 world leaders, including Russia's President Vladimir Putin and Iran's Masoud Pezeshkian, are attending the summit in Delhi. A fire has engulfed an ammunition warehouse in Bulgaria, prompting staff to evacuate the site. Residents reported hearing a series of blasts, but there were no casualties. The cause is unclear. Local media say another facility owned by the same Bulgarian arms company, EMCO, experienced an explosion last month. Speaking to reporters, Interior Minister Ivan Demirchev gave this update.
9: The fires as a whole are under control. At the moment, the teams are checking if our forces can enter the site and finish putting out the remaining isolated small fires inside the facility. But at this stage, we believe there is no danger either to the other warehouses or of the fire spreading outside the warehouse area.
6: French police have said they suspect a suburban train derailment in the northwest of the country on Friday was due to sabotage. More than 40 people were injured, one of them seriously, when the train came off the tracks between the cities of Rouen and Caen in Normandy. A police source said a loose fragment of rail track was discovered at the scene. Newly released documents show that US intelligence warned of major al-Qaeda threats, including a plane attack nearly 3 years before September the 11th, 2001. In one memo from 1998, US officials wrote that Osama bin Laden was planning to hijack planes and might fly an explosive-packed plane into a US city. The documents made public by the CIA are redacted and do not contain significant new revelations. BBC News.
3: Hello and welcome to NewsHour from the BBC World Service live from London. This is Owen Bennett-Jones. Well, US President Donald Trump has said he would love to see a unified Ireland. He was speaking to reporters on his visit to Dublin.
4: Well, I don't want to cause any problems, but I will tell you I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
3: He also said the UK would have something to say about it, but I think it would be a great thing. Well, it's another moment when politicians in London, used to a Loctite relationship with Washington, realise just how much the world has changed. The island of Ireland is currently divided between British Northern Ireland and the sovereign country of Ireland, and the status of Ireland has led to decades of violence, although there is now a peace agreement in place, secured by the Good Friday Agreement, which we'll be hearing about now, because Katrina Perry is a BBC journalist in Dublin, also reports on Washington politics. So, surprised that Trump said this?
10: It's a huge surprise that he said this, Owen, and my colleague Chris Page, who was outside Farm Lee when he made those remarks, said that a gasp

0: की मैं झूठ बोलिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं कुफर तोलिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं जहर बोलिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।